印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागत और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती।

हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल, चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हूं।

0: Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara, pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा।

0: They all constitute an important threat for us.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की. कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी. इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं.
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं. इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं. वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है. ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी.
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है. श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है. और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी.
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं. उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं.
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं. इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है. इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं. और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे.
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा. संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है. इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है. 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था. इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था. द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित

0: Ambulance call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrashed Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद असानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
2: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं।

0: नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉ अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका के महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है जब तिजारती शराकतदारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तिजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तिजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तिजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पूर्व

0: उम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इक्तिसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इक्तिसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो अबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीक शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नवजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने IAS 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद अबनाए हुरमुज में जहाजों की आमदोरफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निपटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना बलजीत सिंह द्वारा तार शहनाई वादन, राग था अलहिया बिलावल, संगत कलाकार थे उस्ताद अख्तर हसन तबले पे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।

0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and Post Office Passport Seva Kendras, and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities, and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. Dr. Jaishankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of Surakshit Passport, Sugam Seva and Sashakt Nagrik. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Dobhal stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search operations at 5 locations in Delhi in connection with a money laundering case linked to 3,000 kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at the premises linked to Harpreet Singh Talwar, Samshuddin and associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. Harpreet Singh Talwar had earlier been arrested by the National Investigation Agency, NIA, in the same case and was recently released on bail. Further investigation is underway. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today inaugurated the commencement of construction work at the Central Secretariat Metro Station for the Central Vista Corridor in the national capital. Speaking to the media, the minister described the moment as historic and highlighted that the project will significantly streamline daily transit for government employees and all professionals. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in the United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments, with his goals adding another impressive accomplishment to his storied career. And that is the end of this news bulletin.

0: ठहर जाने और सुकून से सांस लेने का नाम है। तो बस अपने रेडियो की सुई है ठीक यहीं पर टिकाइए, बाकी का इंतजाम हम कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति पुरी और आज इस कार्यक्रम में मेरी हम सफर है
1: रश्मि कुकरेती। और श्रुति जी, आपको और FM गोल्ड चैनल दिल्ली के सभी श्रोताओं और आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और ये है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और अगर आप इस वक्त घर के किसी कोने में भाई चाय की प्याली थामे बैठे हैं, या ऑफिस की भागदौड़ के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, या कर रहे हैं गाड़ी में सफर, या फिर बस यूं ही दिन भर की व्यस्तताओं से कुछ पल चुरा पाए हैं, तो आइए अगले 50 मिनट हम साथ बिताते हैं।
0: दोपहर के 12:10 से 1 बजे तक, यानी इस वक्त में सिर्फ आपका और हमारा साथ है। आप हमें सिर्फ FM गोल्ड पर ही नहीं सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रोता हमें AIR न्यूज लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: और इस सफर में अगर कोई बात आती है ना आपके दिल में, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, या कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो जरूर लिखिए fmgoldga@gmail.com पर, क्योंकि आपकी हर राय श्रुति जी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, है ना? और जल्दी हर बार की तरह हम आपसे कुछ पूछने भी वाले हैं।
0: रश्मि रुको, अभी नहीं, पहले हम सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

0: तो दोस्तों, एक बार एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। बार बार गिरता, घुटने छिल जाते, मगर हर बार उठकर फिर पैडल पर पैर रखता।
1: किसी ने उससे पूछा कि इतने बार गिरने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गिरा नहीं, मैं सीख रहा था। यही सोच है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से शब्दों में बांधा था। आप जानती हो रश्मि क्या कहा था उन्होंने?
0: भाई, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि जब फेल होते हैं ना, यानी FAIL, उसका अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला सबक सीखा आपने।
1: जी बिल्कुल, और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही साइकिल है ना रश्मि, जिसमें गिरना तो तय है लेकिन उठना जो है
0: हमारे हाथ
1: वो
0: में
1: हमारे
0: है।
1: हाथ
0: जी
1: में है।
0: बिल्कुल। और देखिए, जो श्रुति थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों बार कोशिश की और हर नाकामी से उन्होंने कुछ सीखा।
1: हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कोशिश नाकाम हो ना आपकी, तो उसे हार मत समझिए, उसे
0: जी
1: समझिए कि ये पहली कोशिश है जो आपको आगे कामयाब बनाएगी।
0: बिल्कुल, असफलता को हम दुश्मन नहीं माने, अपना दोस्त माने, अपना गुरु माने, क्योंकि वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और सही रास्ता दिखाएगी।
1: तो दोस्तों, क्या आपने भी असफलता की सीढ़ी से सफर शुरू किया था जो बाद में सफलता में तब्दील हुआ? तो झटपट लिख भेजिए और ईमेल तो बता दे रश्मि
0: जी
1: आप।
0: बिल्कुल, बताती हूँ, fmgoldga@gmail.com। भाई जल्दी से लिख डालिए कि आपने क्या सबक सीखा जब पहली असफलता मिली और सफलता कैसे मिली।
1: और तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी एक हसीना दो दीवाने। देखो रश्मि, अभी हमने सवाल पूछा था और हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, हमें फटाफट से एक मेल भी मिल गया है और ये मेल हमें भेजा है नवीन भाटिया जो मोतीनगर दिल्ली से हैं। ये लिख रहे हैं कि 2003 में जब काम शुरू किया था तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आगे बढ़ते गए।
1: जी, और एक और संदेश आया है, आप हैं अदिति दिल्ली से, वो कह रही हैं कि भाई स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता में मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भागी लेकिन आखिर समय में हार गई, लेकिन उस हार से मैंने प्रेरणा ली, मेहनत की और फिर अगली रेस जीती। भाई वाह अदिति, बनाए रखिए ऐसा ही जज्बा।
0: बिल्कुल, और देखो रश्मि, ये जो कैलेंडर होता है ना, कभी नोटिस किया ये कितने कमाल की चीज है। उसका एक ही पन्ना, एक ही तारीख, न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे होता है।
1: भाई श्रुति, क्योंकि तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती ना, वो तो किसी संघर्ष की निशानी होती है, किसी के सुर की गूंज होती है और बड़े बदलाव की शुरुआत भी होती है।
0: बिल्कुल रश्मि, और आज 24 जून है और ये तारीख कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी है। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस दुनिया की तरफ जहां फैसले लिए जाते हैं, संधियां होती हैं और जहां सदियों से तस्वीर एक जैसी ही रही है, बदली नहीं है।
1: मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ी सी पहेलियां बुझा रही हैं लेकिन यानी कि कॉन्फ्रेंस टेबल में चारों ओर भाई सूट बूट में बैठे पुरुष हैं, लेकिन भाई आज तो 24 जून इसी तस्वीर को बदलने का एक प्रतीक वाला दिन है। और ये दिन है दोस्तों डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना?
0: हाँ बिल्कुल, और साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मान्यता दी और इसका मकसद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था बल्कि एक सवाल खड़ा करना था कि कूटनीति की दुनिया में महिलाएं कहाँ हैं।
1: वाह भाई भाई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं को मौका मिला उन्होंने मिसाल कायम की। और कूटनीति सिर्फ ताकत की भाषा नहीं है, समझ और संवेदनशीलता की भी भाषा है, और ये भाषा तो भाई महिलाओं से बेहतर कौन जानता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि जब तक आधी दुनिया की आवाज मेज पर नहीं होगी तब तक दुनिया के फैसले अधूरे रहेंगे।
1: और आज का दिन खास है क्योंकि आज की तारीख एक सुर भी बसता है। जी हाँ, साल 1897 में आज ही के दिन जन्मे थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जिन्होंने आजादी की सुबह आकाशवाणी से वंदे मातरम गाकर इतिहास रच दिया था।
0: और साथ ही आज भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की भी पुण्यतिथि है। वो इतिहास के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सर्वोच्च पद पर रहे।
1: जी, तो दोस्तों बदलाव चाहे कूटनीति की मेज पर हो, संगीत के मंच पर हो या राजनीति के गलियारों में, उसकी जड़ में तो है हिम्मत और डटकर खड़े रहने की ताकत।

0: और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी को फिल्म थी दिल लगी।
1: हाँ, और देखो रश्मि, एक और मेल आई है, पढ़ूं से?
2: जी बिल्कुल
1: देखो, अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमसे बात करते हैं, अपने विचार, अपने
2: जी
1: अनुभव
2: जी
1: हमसे
2: जी
1: साझा करते हैं। ये मेल आई है डी राजेश्वर राव की, और ये दिल्ली से लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि जब भी मैं कभी ऑफिस जाता हूँ तो गाड़ी में आपका एफएम सुनता हुआ जाता हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ जाती
2: वाह
1: है।
2: वाह, क्या बात है।
1: और लिख रहे हैं कि जो असफलता है ना, वो एक कदम है, एक मील का पत्थर है सफलता की ओर। तो फेलियर कुछ भी नहीं होता, सफलता
2: वाह,
1: की
2: क्या बात
1: सीढ़ियां ही
2: है
1: हैं ये
2: जी,
1: सब।
2: बिल्कुल। और एक और संदेश हमें मिला है, कोटद्वार से सुमन जुड़ी हैं हमारे साथ। वो कह रही हैं कि रिश्तों से जुड़ी ये एक सीख मिली मुझे। वो कहती हैं कि मैं कभी किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, और लेकिन उन अनुभवों ने मुझे रिश्तों की अहमियत करना और संवाद का महत्व सिखाया। वाह, कितनी सुंदर बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप खरी नहीं उतर पाई, वो तो आपका पहला कदम था सुमन। आगे बढ़ते रहिए, प्यार से रिश्तों को संजोए रखिए, जैसे हम संजोए रखते हैं यहाँ
1: बिल्कुल
2: एफएम
1: बिल्कुल।
2: गोल्ड के
1: और
2: चैनल से।
1: देखो बिल्कुल, एक और मेल पढ़ दूं?
2: जी बिल्कुल।
1: ये गौरी शंकर जी का आया है दिल्ली से। लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, इंसान पूरी जिंदगी सीखता है, यानी मरते दम तक। शुरू में हम कोई काम सीखते हैं, मेहनत करने पर कामयाबी ना मिले तो हम दूसरे काम की कोशिश करने लगते हैं, शायद वहां कामयाबी मिल जाए। यानी कि हार नहीं माननी चाहिए इंसान को, कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
2: वाह,
1: बहुत-बहुत
2: अच्छा लग रहा है, और
1: शुक्रिया।
2: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लगता है जब मैं फिल्में देखती हूँ, श्रुति, है ना। मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ, अब सब्जेक्ट बदल रही हूँ, कि फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और हिंदी
1: तो
2: फिल्में भी मुझे बहुत पसंद
1: अच्छा,
2: हैं।
1: तो रश्मि जरा सोचिए, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? वो हिंदी में थी या किसी और भाषा में थी जिसने आपका दिल जीत लिया? शायद वो कंतारा थी, या आरआरआर थी, या कोई मराठी फिल्म
2: भाई
1: थी?
2: श्रुति, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, मैं क्षेत्रीय सिनेमा बहुत देखती हूँ, और बरसों तक हमारे देश में एक धारणा बनी रही कि भाई बड़ी फिल्मों का अर्थ है हिंदी फिल्में, करोड़ों का बजट और उनके वहां के सुपरस्टार। पर विश्वास कीजिए, क्षेत्रीय सिनेमा बहुत खूबसूरत निखर कर आ रहा है।
1: और जानती हो, बाकी सब सिनेमा जो छोटा, सीमित, सिर्फ अपनी भाषा और अपने राज्य तक ही सीमित था, उसको कम पहचान मिलती थी। लेकिन अब
2: लेकिन पिछले सालों में बहुत कुछ बदला है
1: हाँ
2: ना
1: बिल्कुल
2: श्रुति, और
1: बिल्कुल
2: ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे मगर मजबूती से बना है। भाई देखो, आज तेलुगु सिनेमा ऑस्कर तक पहुंचा है, और कन्नड़ सिनेमा राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ता है। मलयालम सिनेमा की अगर बात करें तो भाई कहानी कहने की कला में दुनिया भर में सराहा जाता है। वाह, वहां की कला फिल्में, और पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, भोजपुरी सिनेमा की तो अलग पहचान है।
1: और जानती हो रश्मि, इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह है डबिंग का जादू।
2: भाई वाह, भाई डबिंग का जादू आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आप तो आवाज की जादूगर हो ही, है ना।
1: नहीं वो तो देखो, हम यहाँ पर बैठे हैं तो सभी आवाज के जादूगर हैं।
2: जी
1: और आज कोई भी फिल्म जो है ना, सिर्फ अपनी मूल भाषा तक ही नहीं रुकती, बल्कि वो हिंदी में डब होकर सीधे पूरे भारत के घर घर तक पहुंचाती है। और कई बार तो तमिल, बंगाली, पंजाबी में भी डब होकर देश के हर कोने में अपनी जगह बना
2: हाँ,
1: लेती है।
2: और देखिए श्रुति, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ने इस सफर को और भी आसान बना दिया है, क्योंकि एक क्लिक पर आप भाषा बदल सकते हैं। यानी कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं आई, आपको जम नहीं रही, तो आपने भाषा बदल दी, और कहानी अपनी पसंद की जुबान में सुन सकते हैं। यही वजह है कि अब क्षेत्रीय सिनेमा सिर्फ अपने राज्य या अपनी भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर क्षेत्र में भी अपनी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है और सराहा जा रहा
1: और
2: है।
1: इतना ही नहीं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है क्षेत्रीय सिनेमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम घर बैठे अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू हो पा रहे हैं, और शायद इसीलिए नए टैलेंट को पहचान भी मिल
2: भाई
1: रही
2: और
1: है।
2: भी तो टैलेंट दिखाओ, कोई गीत भी तो सुनाओ श्रुति।
1: हाँ बिल्कुल सुनाते हैं, तो अप्रैल फूल फिल्म में आप सुने
2: लता
1: लता मंगेशकर
2: मंगेश
1: को।

0: देखो रश्मि, कितना अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, तो
1: जी
0: मजा आ जाता है। और एक और मेल हमारे पास आई है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। ये लिख रहे हैं कि गिरकर उठना सीख लो, यही असली जिंदगी है। हार का डर मत पालो, कोशिश छोड़ना ही हार है। लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, ये या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अनुभव। कितनी
1: वाह,
0: बढ़िया बात
1: क्या
0: कही है ना।
1: बात है, वाह वाह। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कांता जी रोहिणी से कह रही हैं कि माँ की कहानी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश में मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन समय के साथ जब बच्चों को आगे बढ़ते देखा तो मैं समझ गई कि हर छोटी बड़ी गलती से भी जो सीख का हिस्सा ही थी, और हर छोटी बड़ी गलती से मैंने सीखा। बहुत अच्छी बात। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना बच्चों के साथ जो सिखाना है, वो माँ से बेहतर और कौन जान
0: बिल्कुल
1: सकता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और आजकल तो देखो फोन हर बच्चे के हाथ में है, हर बड़े के हाथ में है,
1: जी जी
0: तो फोन से अगर हम अच्छी चीज जाने ना तो कितना अच्छा रहता है। मतलब
1: जी
0: ज्ञानवर्धक बातें अगर हमें मिलती रहे, हमारी
1: हाँ
0: जानकारियां बढ़ती रहे, तो कितना अच्छा
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और सवेरे सवेरे अगर फोन स्क्रॉल करें ना श्रुति जी, तो कभी कीटो डाइट, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी प्रोटीन डाइट, कभी डिटॉक्स जूस, ये सब भरमार दिख जाती है। और हर कोई कहता है ये तरीका अच्छा है। सच बताऊं कई कई बार मेरे दिमाग में बहुत उलझन पैदा हो जाती
0: देखो
1: है।
0: ना रश्मि, हर हफ्ते एक नया फिटनेस ट्रेंड आता है और हर ट्रेंड यही दावा करता है कि उसके पास सबसे तेज और सबसे आसान नतीजा है। दरअसल इन ट्रेंड्स की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो सोशल मीडिया की रफ्तार है। जहां किसी सेलिब्रिटी की एक पोस्ट या किसी इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो किसी भी थ्योरी को रातों रात मशहूर बना देता है, भले ही वो शरीर के लिए सही हो या ना हो।
1: भाई श्रुति, मुझे तो लगता है इसके मुकाबले खड़ी है एक बहुत पुरानी और सीधी सीधी सोच भाई, जिसे कहा जाता है संतुलित डाइट, माने है ना। और
0: बिल्कुल।
1: इसमें ना कोई सख्त परहेज है ना कोई चमत्कारी शॉर्टकट है। बस आपको ये समझना है कि शरीर को अनाज, सब्जी, फल, प्रोटीन और थोड़ी वसा सभी की जरूरत है, और इन्हें सही मात्रा में लेना ही असली सेहत की कुंजी है।
0: देखो कई बार ना ये जो हमारे पोषण विशेषज्ञ हैं, ये बार बार यही कहते हैं कि किसी एक खाद्य समूह को पूरी तरह से छोड़ देना या किसी एक ही चीज को सब कुछ मान लेना लंबे समय में नुकसान कर सकता
1: जी
0: है।
1: जी
0: जबकि
1: बिल्कुल
0: संतुलित और अच्छा खान पान जो होता है ना, वो शरीर को लंबे समय तक मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: तो यही तो कारण है श्रुति कि फिटनेस ट्रेंड चाहे कितने भी चमकदार दिखें लगे और

0: कोई असली और टिकाऊ नतीजा जो है ना, वो तो भाई संतुलन से ही मिलता है, भाई किसी फॉर्मूले से नहीं मिलता।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो अगली बार श्रोताओं, अगर आपको कोई नया डाइट ट्रेंड फीड पर दिखे तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या वो वाकई संतुलन की जगह ले सकता है या फिर एक नया शोर है। इसी सोच के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: और श्रुति भाई, चॉकलेट लाइम जूस की बात हुई और ऐसे ही खाने पीने से जुड़ी जो है एक जवाब आ गया है मेरे पास, एक संदेश है। तो आप हैं सुरभि दिल्ली से, वो बता रही हैं कि पहली बार जब पूरे परिवार के लिए कोई खास डिश बनाई तो बिल्कुल ही खराब बन गई। हाँ, घर में सब हंसे, लेकिन फिर उस दिन से मेरे को खाना बनाने सीखने का शौक पैदा हुआ और आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ भाई।
1: ये
0: वाह सुरभि।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे साथ भी ऐसा ही

0: हुआ था कुछ, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। अभी एक और मेल बता देते हैं, इद्रिस सैफी जी का मेल आया है। ये बोल रहे हैं कि सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक मैं दुकान पर बैठकर सिर्फ FM गोल्ड ही सुनता हूँ।
1: और इन्हें सवाल भी बता दो।
0: हाँ, सवाल बताना बहुत जरूरी है। हमने सवाल पूछा था कि क्या आपकी सफलता की सीढ़ियों में पहली सीढ़ी असफलता की थी, तो अगर
1: उससे आपने क्या सीखा है
0: और उससे आपने क्या सीखा, क्योंकि आपके अनुभव किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं
1: जी।
0: तो यदि आप हमारे कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं तो हमें झटपट मेल भेजिए
1: fmgold@gmail.com
0: पर। और देखो एक और मेल आया है हमारे पास, ये डी राजेश्वर राव जी का ही है, जिनका मेल अभी हमने पढ़ा था। उन्होंने बोला कि मेरी
1: एक और मेल आया,
0: हाँ उनका एक और मेल आया है। ये लिख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो एक आर्टिस्ट है और MFA उसने किया था शांति निकेतन से, पर वो कहती है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो लेकिन वो कभी डिमोरलाइज नहीं होती है और वो हमेशा सही काम करने की सोचती है। तो हमेशा हर एक को सक्सेसफुल होने के लिए काम करना ही चाहिए
1: जी, और चलते जाना ही जिंदगी का नाम है, रुकना हमारा काम नहीं है ना। और जब चलते जाना है तो फिर तो यानी कि एक सफर की बात हो रही है ना। भाई एक खुली सड़क हो और खिड़की से आती ताजी हवा हो, पसंदीदा गीत हो और मंजिल कोई तय नहीं हो, बस चलते जाना हो, तो भाई इसे कहते हैं श्रुति रोड ट्रिप। इसका अलग ही मजा है ना।
0: बिल्कुल, क्या बात है रश्मि, बहुत शायराना बातें कर रही हो। ये कहीं हाल ही में तुमने कोई रोड ट्रिप तो नहीं किया, उसका अनुभव तो नहीं बता रहे? पर बात तो सच है, कभी कभी सफर ही मंजिल बन जाता है। आज पूरे भारत में रोड ट्रिप का जो क्रेज बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक नई सोच, एक जीवन का नया दर्शन है।
1: जी बिल्कुल, अब भारत में जो कहा जा रहा है कि यात्री अब हवाई जहाज की बजाय सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दरअसल ना रोड ट्रिप पर एक ऐसा अनुभव है जो वो आपको सब कुछ ऐसा दिखाता है जो फ्लाइट की खिड़की से कभी नहीं दिखता।
0: बिल्कुल, रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा ढाबा, किसी अनजान गाँव की सुबह, पहाड़ों के बीच अचानक मिलती झील, या किसी गांव में किसी बुजुर्ग से अगर 5 मिनट बातचीत हो जाए, तो ये जिंदगी भर याद रहती है।
1: देखो ना श्रुति, कोरोना के बाद में ना लोगों में भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की एक प्रवृत्ति बढ़ी है और रोड ट्रिप उन्हें अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने लोगों के साथ घूमने की आजादी देती है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर तो रोड ट्रिप के लिए पहले से भी बेहतर समय है ना।
0: और जानती हो क्यों? क्योंकि सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे लेह लद्दाख, स्पीति वैली, कच्छ का रण, कोंकण तट, कुर्ग की हरियाली, ये सब अब पहले से ज्यादा आसानी से सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। और युवाओं में तो ये जुनून इस कदर बढ़ा है कि सोलो रोड ट्रिप यानी अकेले निकल पड़ना एक नई पहचान बन गई है, खासकर महिलाओं में।
1: अच्छा।
0: जो अब बिना किसी झिझक के अकेले ही लंबी लंबी यात्राएं कर रही हैं।
1: तो दोस्तों अगर जिंदगी की भाग दौड़ में कभी थका हुआ महसूस करें, मन उदास हो, कभी एक ब्रेक चाहिए, तो गाड़ी निकालिए, एक रास्ता चुनिए और निकल पड़िए, क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते भाई, सड़कों पर मिल जाते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। रोड ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं है, खुद को फिर से खोजने का सबसे खूबसूरत तरीका है। पर सड़क पर चलते हुए ख्याल रखिएगा अपना भी और दूसरों का भी।

0: देखो कितनी गर्मी पड़ रही है ना रश्मि, और
1: हम्म,
0: ये जब चिलचिलाती धूप हो, शरीर थका हुआ हो, गला सूख रहा हो, तो एनर्जी ड्रिंक का ख्याल चारों तरफ से घेर लेता है। तब एक बार जरा सा थोड़ा सा रुककर सोचो तो सही कि हमारी नानी दादी बिना किसी एनर्जी ड्रिंक के इतनी गर्मी में भी तंदुरुस्त कैसे रहती थी।
1: भाई मैं बताती हूँ श्रुति, इसका जवाब है भाई सत्तू, वो देसी सुपर फूड जो सदियों से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के घरों में गर्मियों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है और आज पूरे देश में जिसकी धूम मच रही है।
0: जानती हो रश्मि, सत्तू असल में भुने हुए चने या जौ को पीसकर बनाया जाता है,
1: जी
0: और इसे गरीबों का प्रोटीन भी कहा जाता है। गरीबों का नहीं, आजकल तो सबका प्रोटीन है, लेकिन इसके गुण बहुत महंगे हैं, क्योंकि जो किसी भी प्रोटीन पाउडर से कतई कम नहीं है। 100 ग्राम सत्तू में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फाइबर और भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाया जाता है।
1: भाई मैं तो इतना जानती हूँ श्रुति कि ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, पाचन दुरुस्त करता है और देर तक भूख नहीं लगने देता। और भाई गर्मियों में लू से बचाव के लिए तो सत्तू का शरबत एक कवच की तरह काम करता है। और अब तो बड़े बड़े शहरों में भी सत्तू की वापसी हो रही है।
0: हाँ, अब तो कैफे और हेल्थ स्टोर्स जो है ना, उनमें भी सत्तू स्मूदी, सत्तू के लड्डू, सत्तू एनर्जी बार मिलने लगे हैं,
1: वाह,
0: और फिटनेस विशेषज्ञ तो अब खुलकर सत्तू को पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में सुझा रहे हैं।
1: भाई बहुत अच्छी बात है, अपना देसी सत्तू जो है इसे बहुत आसान ड्रिंक बना सकते हैं। हम आपको बता लेते हैं, है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल।
1: नमकीन सत्तू शरबत कैसे बनाएं। भाई 1 गिलास ठंडे पानी में 2 बड़े चम्मच सत्तू घोलिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और चुटकी भर काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिला लीजिए। बस तैयार है आपका देसी कूलिंग ड्रिंक जो लू से भी बचाए और एनर्जी भी दे।
0: और अगर मीठा सत्तू पीना हो तो 1 गिलास ठंडे दूध या पानी में 2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच गुड़ या शहद और इलायची पाउडर मिलाइए। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है।
1: हाँ, और देखिए कितने सारे तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। भाई आप सत्तू की लस्सी भी बना सकते हैं। एक कप दही ले, उसमें 2 चम्मच सत्तू डालें और थोड़ा पानी डालें, काला नमक और पुदीना मिलाकर फेंट दें और प्रोटीन से भरपूर ये ड्रिंक दोपहर की थकान को पल भर में उड़ा देती है और पेट भी देर तक भरा रखती है।
0: हाँ बिल्कुल। तो इस गर्मी में महंगे जो सप्लीमेंट और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स है ना, इनसे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपनी रसोई में उसी पुरानी विरासत को जगह दीजिए। सत्तू सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पुरखों की समझदारी है और जलती गर्मी में आपके शरीर के लिए प्रकृति का सच्चा तोहफा है। तो इसके साथ आप सीधा मत

0: भाई समय का तो पता नहीं चला, और देखिए आज की ये 50 मिनट की मुलाकात भी यहाँ पूरी हो रही है। उम्मीद है आपके दिन के इस हिस्से में हम थोड़ा सा सुकून और थोड़ी ताज़ा सोच जोड़ पाए होंगे।
1: आपकी राय, आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा अहम रहेंगे, तो लिखते रहिए fmgoldga@gmail.com पर, और हमें बताइए कि आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी। ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, कल फिर इसी समय इसी जगह घर आंगन में आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए स्वीकारिए श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी।

0: लता मंगेशकर को अभी आप फिल्म आंखें में सुन रहे थे।
1: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और

0: समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। चार महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमरीका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमरीका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +989128109115, +989128109109, +989128109102, and +989932179359. Indian nationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in and mail to cons.tehran@mea.gov.in. U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun a three-day tour of the Gulf region aimed at reassuring key Arab allies following Washington's newly negotiated agreement with Iran after the conclusion of the four-month U.S.-Israeli conflict with Tehran. Rubio arrived in Abu Dhabi late last night and is scheduled to hold talks in the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain before meeting officials from the Gulf Cooperation Council later this week. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at five locations in Delhi in connection with the money laundering case linked to 3,000 kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at premises linked to Harpreet Singh Talwar, Samshuddin and their associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. Harpreet Singh Talwar had earlier been arrested by the National Investigation Agency NIA in the same case and was recently released on bail. Further investigation is underway. Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy today urged the steel industry to embrace digitalization as a cornerstone for future growth. Addressing the Chintan Shivir on digitalization in the steel sector in New Delhi, he said the country has maintained its position as the world's second largest steel producer since 2018. The minister said that the crude steel production has grown at nearly 8% annually since financial year 2021-22, while finished steel consumption has risen by approximately 13%, driven by strong domestic demand. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra in the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the Group K match. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की. आज का हमारा सफर है 1980 की उस जबरदस्त फिल्म का, जिसे देखकर ये लगता था कि ये कहानी कुछ नई है, कुछ ताजी है. एक ऐसी कहानी जिसने पुनर्जन्म और बदले की कहानी को एक नया आयाम दिया, जहां मौत के बाद भी बदला लेने का जज्बा जिंदा रहता है. जी हां श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज की. पुनर्जन्म, बदला, प्यार और ऐसा म्यूजिक जो आज भी कानों में गूंजता है, यही है कर्ज का जादू.

सुभाष घई के निर्देशन में बनी कर्ज उस दौर की सबसे अनोखी फिल्मों में से एक थी। जब अधिकांश फिल्में पारिवारिक ड्रामा या एक्शन पर आधारित होती थी, तब कर्ज ने पुनर्जन्म, रहस्य, म्यूजिक और थ्रिलर का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म 11 जून 1980 को रिलीज हुई थी और धीरे धीरे इसे भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शामिल किया जाने लगा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी ऋषि कपूर ने, जो निभाया था किरदार मोंटी का, जो काफी फेमस हुआ था और बहुत ही लोकप्रिय भी हो गया था। ऐसा किरदार जो अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे एक हत्या के रहस्य को उजागर करता है। इसके अलावा फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सिमी ग्रेवाल, जो कामिनी का रोल किया, टीना मुनीम ने टीना का रोल किया, प्रेमनाथ, प्राण और राजकिरण। विशेष रूप से श्रोताओं, सिमी ग्रेवाल ने अपने नकारात्मक किरदार से दर्शकों को वाकई चौंका दिया था। उस समय पर ज्यादातर वो बहुत ही सॉफ्ट किरदार वाली फिल्में करती थी, बहुत ही पॉजिटिव किरदार वाली फिल्में करती थी, लेकिन कर्ज में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी और खलनायिका का किरदार निभाकर अपने अभिनय क्षमता को दर्शकों के सामने दर्शा दिया।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज बात हो रही है फिल्म कर्ज की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी।

श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक अमीर और नेक दिल युवक रवि वर्मा से। रवि को कामिनी नाम की एक खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है, कामिनी यानी कि सिमी ग्रेवाल, और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कामिनी का प्यार सच्चा नहीं होता और वो रवि की दौलत के लिए उससे शादी करती है। शादी के बाद कामिनी करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन जाती है, लेकिन और दुर्घटना में यानी कि पहाड़ों से फेंक दिया जाता है रवि वर्मा को, और उसको करार दिया जाता है कि ये दुर्घटना हो गई है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रवि का पुनर्जन्म मोंटी नाम के गायक के रूप में होता है। बचपन से ही मोंटी को कुछ अजीब सपने आते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आने लगी थी। आखिरकार मोंटी कामिनी के अपराधों का पर्दाफाश करता है और अपने पिछले जन्म का बदला पूरा करता है। तो ये जो कहानी थी, ये पुनर्जन्म की कहानी थी, और यही सोचकर जब देखते हैं ना कि हीरो मर जाता है तो दर्शक मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब वही हीरो मर के ऋषि कपूर के रूप में, मोंटी के रूप में वापस आता है तो लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और कहानी में एक अलग ही रोचक बना जाता है, एक अलग ही कहते हैं मोड़ आ जाता है, और ऐसा खूबसूरत मोड़ जिसे दर्शकों ने खूब सराहा, पसंद किया।

और कार्यक्रम में वक्त है अपने श्रोताओं के मेल्स को शामिल करने का। तो जी सबसे पहला हमारे पास संदेश आया है सुनील पाठक जी का और ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म के तहत फिल्म कर्ज की गीतर कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी और इसे की कहानी और गीत सुनने के लिए सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो भैया आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशात जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। इंदिरानगर भवतपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। सतीश अनेजा, विमला अनेजा और लिखते हैं कर्ज फिल्म बेहद खूबसूरत अपने जमाने की हिट फिल्म रही है, गीत भी लाजवाब रहे हैं, सभी कलाकारों की भागीदारी भी शानदार थी। इसके अलावा संदेश हमारे पास आया है शशि भल्ला किरण गुप्ता जी का, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और ये जुड़ रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से। संदेश अगला है अजीत भवसार जी का और ये लिखते हैं पुरानी फिल्म ऋषि कपूर, सिमी राजकिरण की फिल्म कर्ज, इस फिल्म में एचएमवी का रिकॉर्ड है बिल्कुल और डांस सॉन्ग फिल्म आ गया, गीत संगीत दोनों ही बहुत ही लाजवाब हैं। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़ रहे हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वडिंगखेड़ा। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली आरती। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। फजल का पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और परिवार के सभी लोग जुड़ रहे हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू जी का और लिखते हैं आज हम फिल्म कर्ज के बारे में विस्तार से जानकारी मिल रही है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने तो इसके हैं ही शानदार। छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से जुड़ रहे हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया भी जुड़ रहे हैं बालोद छत्तीसगढ़ से। नगर कोहरा जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत जुड़ रहे हैं। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर, पंजाब से। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के संदेश लगातार आ रहे हैं, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, कर्ज की कहानी 1975 की हॉलीवुड फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड से प्रेरित थी। सुभाष घई साहब ने खुद माना कि उस फिल्म का कुछ हिस्सा और भारतीय पुनर्जन्म की अवधारणा मिलाकर कर्ज फिल्म बनाई गई थी। और एक और खास बात यह है इस फिल्म की कि सिमी ग्रेवाल और ऋषि कपूर की ये दूसरी फिल्म थी साथ में। इसे पहले 1970 में मेरा नाम जोकर में दोनों साथ काम कर चुके थे। अब बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की, जो है इस फिल्म की जान, जैसे इस फिल्म को अमर बनाया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की जोड़ी ने। और इन दोनों महान संगीतकारों ने 1977 से लेकर 1980 तक लगातार 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जीता था। और कर्ज ही इसी विजय सफर की आखिरी कड़ी थी। गीत लिखे थे महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने, जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत अमर गीत दिए। और गाने तो आप सुन ही रहे हैं, इस फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक गाना ऐसा जहां आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा गाना ज्यादा फेमस है। और आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में ये गाने हैं जो आज भी ऐसे हैं कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा श्रोताओं, आप हमें मेल करके जरूर बता सकते हैं। अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: उर्दू खबरें सुनोगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव। पहला खास खबरां। भारत ने पाकिस्तान वालों संयुक्त राष्ट्र विच कश्मीर का मुद्दा उठाने से सख्त इतराज जताया है। भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने स्टील उद्योग को भविष्य के विकास लिए डिजिटलीकरण अपनाने का सद्दा दिता है। पंजाब विच वोटर सूचियां की विशेष गहन सोध तहत घर घर गणना का पड़ाव भलके तो शुरू हो रहा है। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ईरान विरुद्ध फौजी मुहिम को रोकने लिए एक बिल पास किया है। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक बरतानिया के दौरे लिए 24 मैंबरी जूनियर महिला टीम का ऐलान कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान वालों संयुक्त राष्ट्र विच कश्मीर का मुद्दा उठाने से सख्त इतराज जताया है। पाकिस्तान उपर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण का इल्जाम लाते हुए भारत ने कहा है कि सह प्रधान वजो निरपक्षता बनाई रखने की बजाय पाकिस्तान ने अपने अहदे की दुरवरतों की है। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने सह प्रधान वजो पाकिस्तान के विहार की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि वसीम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों का जवाब देते हुए श्री हरीश ने जम्मू कश्मीर बारे भारत के लंबे समय के स्टैंड नूं दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का अंदरूनी मामला है। भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने स्टील उद्योग को भविष्य के विकास लिए डिजिटलीकरण अपनाने लिए कहा है। उन्होंने आज नवी दिल्ली में स्टील सैक्टर में डिजिटलीकरण बारे एक विचार चर्चा सैशन में यह गल कही। स्टील सैक्टर की मजबूत कारगुजारी का हवाला देंदे श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश ने 2018 तो दुनिया के दूजे सब तो वड्डे स्टील उत्पादक वजो अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय साल 2021-22 तो कच्चे फौलाद

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वह ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है और फीफा आलमी कप में आज मैक्सिको में कोलंबिया ने डीआर कोंगो को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर यह कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे एक इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तखार अहमद की रायजनी करके जवाब में यह बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तनकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के देरीना मौकफ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाफे के इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामे बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। तेहरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो सोच समझकर और एहतियात के साथ ईरान का सफर करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफारतखाने ने यह भी कहा कि वो जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं, जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया कि वो लगातार सिफारतखाने की बाजाबता वेबसाइट देखते रहें। सिफारतखाने ने मदद के लिए हंगामी नंबर भी जारी किए हैं, +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 भारतीय बाशिंदे सफारतखाने से ईमेल के जरिए भी cons.tehran.mea.gov.in से राब्ता कायम कर सकते हैं। नीति आयोग के नायब सरबराह डॉ अशोक कुमार लाहिरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉ लाहिरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 खरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: नामरीगढ़ से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकारी मुलाजमीन और तमाम पेशावर अफराद की रोजमर्रा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा, इसमें शिवाजी स्टेडियम भी शामिल होगा और जनकपुरी वेस्ट से इंद्रलोक तक मुसाफिर बिला रुकावट सफर कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय सनतों के वजीर एच डी कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज करना मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नई दिल्ली में स्टील के शोबे की डिजिटलाइजेशन पर चिंतन शिविर से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मुतहरिक स्टील शोबे की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने 2018 के बाद से स्टील की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे मुल्क की अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली बरस 2021-22 से खाम स्टील की पैदावार तकरीबन सालाना 8% बढ़ी है जबकि तैयारशुदा स्टील की खपत में अंदाजन 13% का इजाफा हुआ है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था, उसी मुनासिबत से यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफर में आसानी पैदा हुई है। आलमी मौकों तक रसाई में तोसी हुई है और शहरियों को बाख्तियार बनाया गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज कोंकण और गोवा में तेज से

0: बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हफ्ते के दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा शुरू किया। इस दौरे का मकसद अमरीका के ईरान के साथ तय पाने वाले समझौते के बाद अपने अरब साथी मुल्कों को फिर से एतमाद में लेना है। अमरीका, इसराइल और तेहरान के दरमियान 4 महीने से जारी लड़ाई के बाद अमरीका ने ईरान के साथ समझौता किया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। यह दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम व्हाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बैन अल-अक़वामी की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। टीम की कप्तान खैदम शिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंजली हर्षा रानी मिंज 2 गोलकीपर होंगी। नौरोज के इस दौरे का आगाज स्कॉटलैंड की सीनियर खवातीन की टीम के साथ 2 मुकाबलों से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मैक्सिको के ग्वाडा लाजारा में ग्रुप के मैच में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल अमरीका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian Embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals to continue to avoid all non-essential travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualifies for round of 32 after beating DR Congo 1-0 in Mexico today. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
2: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
1: The Indian envoy also spoke about the ongoing review of the UN mandates under the UN 8T framework, which aims to improve efficiency across the organization. Indian embassy in

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा

0: जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य

0: का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में

जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर

0: जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हरा कर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी चुलबुली अदाओं, शानदार डांस और दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर, जिन्हें प्यार से लोलो भी कहा जाता है। कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके जीवन और उनके फिल्मी सफर की कहानी और सुनेंगे उनके कुछ सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, 25 जून 1974 को जन्मी मुंबई में जन्मी करिश्मा कपूर प्रतिष्ठित कपूर परिवार से आती हैं। उनके माता पिता अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता कपूर हैं। उन्होंने कम उम्र में फिल्मों में कदम रख दिया था। 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने अभिनय करियर की उन्होंने शुरुआत की। उस दौर में कपूर परिवार की बेटियों का फिल्मों में आना असामान्य माना जाता था, लेकिन करिश्मा ने यह परंपरा बदली और अपने दम पर पहचान बनाई।

श्रोताओं, बहुत सारे करिश्मा कपूर पर फिल्माए हुए गीत हैं और इसी के साथ बहुत सारे ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं के नाम हम एक बार आपको बता दें जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरखुलूस आदाब कबूल करें, एक ही कलाकार कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ जा रही हूं, जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संदीप मक्कड़ भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया, जालंधर पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। नमस्कार जी, पहला जी प्यार के पहले पंकज शर्मा जी, मुझे आपकी ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने मैसेज भेजा ये हमें दिखाई दे रहा है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, अमर रमेश कुमार खत्री, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता जी, राम राम जी के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 1991 में पहली फिल्म प्रेम कैदी से इन्होंने करियर की शुरुआत की, ये जानकारी हमें दे रहे हैं राजेश सेन जी। इन्हें घर में प्यार से बेबू कहते हैं, बेबो कहते हैं, इन्हें घर में प्यार से लोलो कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ इन्होंने कई सुपरहिट पिक्चर दी, राजा बाबू, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल। आज इनके जन्मदिन पर इन्हें बहुत बहुत बधाई, यही लिखा है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन जी ने, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक ही कलाकार में आज करिश्मा कपूर जी के बारे में बहुत उम्दा बातें बता रही हो, लवली रोमांटिक गीत में मैं तो रस्ते पे जा रहा था। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा करिश्मा कपूर जी पर फिल्माया गया।

1996 में आई राजा हिंदुस्तानी उनके करियर का बड़ा मोड़ रहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1997 में आई दिल तो पागल है ने करिश्मा कपूर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म में उनके अभिनय और डांस को खूब सराहा गया। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों मिले। हाल ही में उन्होंने बताया कि उस दौर में कई अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना था, लेकिन करिश्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यादगार अभिनय किया। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जी हाँ श्रोताओ, सिर्फ मनोरंजक भूमियों का ही नहीं बल्कि फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों ने करिश्मा के अभिनय का परिचय दिया। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि

श्रोताओं, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज हमारे पास आया है, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडीलो हारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोग्राम गीत पसंद आ रहे हैं, ये लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। मैडम जी नमस्कार के साथ, चने सरगोथ कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चल रहे हैं, जो कि कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडीलो हारा बालोद छत्तीसगढ़ से ही आया है। देवशंकर तामुरिया जी ही हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया नमस्कार के साथ हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ये लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने करिश्मा कपूर के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। इसके साथ ही चलते हैं।

अगले मैसेज की तरफ, जो कि आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, करिश्मा कपूर का सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानी है। 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल करिश्मा ने हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में और गीत दिए हैं। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, मैटिनी मेलोडीज।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग की ऐसी मधुर धुनें जिन्होंने दशकों बाद भी अपनी ताजगी और मिठास बरकरार रखी है। 1950 से 1990 के दशक के गीतों को अक्सर बॉलीवुड में गोल्डन इरा कहा जाता है, जो अपनी मधुरता, भावपूर्ण गायकी और उत्कृष्ट संगीत के लिए प्रसिद्ध है।

श्रोताओं, ये गीत जिंदगी के उन अनकहे एहसासों को बयां करता है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। लता जी की जादुई आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत इसे अमर बनाता है।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी और गहराई। हर शब्द दिल को छू जाता था, हर धुन सीधे आत्मा तक पहुंचती थी।

स्वर्णिम दौर के गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुरीली धुनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता था, जिसने इन्हें पीढ़ियों तक लोकप्रिय बना दिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला बहुत ही खूबसूरत गीत।

श्रोताओ, दोपहर की धूप में जब यादों का साया मिलता है तो पुराने गीतों का हर नगमा दिल को बहुत प्यारा लगता है ना?

दोस्तों, पुराने गीतों की खुशबू कुछ ऐसी होती है जैसे बंद किताब में रखा कोई गुलाब, सालों बाद भी महकता है और दिल को फिर से जवान कर जाता है।

दोस्तों, देखते ही देखते आज की ये संगीत की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कार्यक्रम के सारे गीत आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपकी दोपहर को यादगार बना दिया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, उर्दू मजलिस।

स्टीरियोटाइप नहीं है, उनका एक आजादाना वजूद है। उन्होंने नॉवलों में जमाने कदीम से लेकर जदीद अहद तक की औरत के मुख्तलिफ रूप दिखाए हैं। उनका अफसाना हसब नसब यूपी के एक तारीखी शहर शाहजहांपुर के एक जमींदार मुतमव्विल पठान घराने की एक खुददार खूबसूरत शानदार बापरदा लड़की छम्मी की कहानी है, जो अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अपने मंगेतर कजन के नाम पर पूरी जिंदगी यूं ही काट देती है और वो ऐश परस्ती में डूब गया है और एक बाजारी औरत से शादी कर लेता है। छम्मी खुददारी की वजह से उनसे कोई माली इमदाद कबूल नहीं करती। हालात ने उनसे बहुत कुछ कराया, उन्हें लोगों के घरों में मुगलानी और हाउस कीपर बनकर रहने पर मजबूर किया और आखिर में छम्मी बम्बई के एक मॉडर्न किस्म के कहबखाने की मालकन के साथ रहती हैं, जहां उनका काम नमाज रोजा और तिलावत करना है। इसी तरह का एक अफसाना कारमन है, जिसमें कारमन एक लड़की मुलाजमत पेशा है जो मनीला में रहती है और अपने अमीर और एक बहुत आला खानदान के महबूब के इंतजार में है और तकरीबन उसको पूछती है, जिससे वो इसलिए शादी नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने गरीब बीमार बाप का इलाज कराना था, जबकि वो लड़का इस दौरान शादी करके एक बच्चे का बाप बन चुका है। उनके अफसाना आवारा गर्द में, जो यूरोप में दूसरी जंग अजीम के पस मंजर में लिखा गया है, एक लड़के की जबानी अपने मुहाफिजों के हाथों माँ की अस्मत दरी का किस्सा है। सेंट फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया के एतराफात उनका एक अफसाना है, जिसमें 8वीं सदी ईस्वी के यूरोप के शाही खानदान की एक लड़की की कहानी है, जिसको अपनी पसंद से जिंदगी गुजारने का हक नहीं दिया जाता और इसे राहबा बनकर मजबूरन रहना पड़ता है। उनके मशहूर मारूफ नॉवल आग के दरिया की चंपा, जो कदीम जमाने में अयोध्या के राजगुरु की बेटी है, अपनी जिहानत और हुसन के बावजूद अपनी मर्जी के खिलाफ एक उम्र रसीदा ब्राह्मण से शादी करने पर मजबूर हो जाती है और अहद वस्ता में चंपावती के रूप में मशरक वस्ता से आए हुए अबुल मंसूर कमालुद्दीन से मोहब्बत करती है, जो इसे अपनी फतूहात के नशे में भूल जाता है और वो तन्हा सारी जिंदगी इसके इंतजार में गुजार देती है। और फिर इस नॉवल में चंपा लखनऊ में बाजार हुस्न में एक बाला खाने में मिलती है और जदीद जमाने में चंपा एक पढ़ी लिखी हसीन जमील लड़की होने के बावजूद अपने आइडियल मर्द से अपने दिल का हाल नहीं कह पाती और तन्हाई उसका मुकद्दर बन जाती है। नॉवल आखिर शब के हमसफर आजादी से जरा कबल बंगाल की सियासी और समाजी सूरत हाल में दहशत पसंद तंजीम के कौलो फेल में पाए जाने वाले तजादात की तर्जुमानी करता है। आखिर शब के हमसफर के निस्वानी किरदार दीपाली सरकार, उमर राय और रोजी बहुत बाविकार और बावजन हैं। ये न सिर्फ मर्द किरदारों के मद्दे मुकाबल हैं, रफीक-ए-कार हैं, बल्कि वो मर्द किरदारों के मुकाबले ज्यादा साबित कदम, बेखौफ और अपने कॉज से ज्यादा कमिटेड नजर आते हैं। इस नॉवल के निस्वानी किरदार सानवी या जिमनी किरदारों के बजाय मरकजी और बुनियादी किरदारों की शक्ल में नजर आते हैं। कुरतुलैन हैदर के नॉवलेट्स के मरकजी किरदार भी औरतें हैं। दिलरुबा उनका एक नॉवलेट है, जो लखनऊ के जवाल पजीर जागीरदाराना माशरे के पस मंजर में लिखा गया है, जिसमें तब्दील होती हुई तहजीब की दास्तान है। इस नॉवलेट में एक तरफ खानदानी तवायफ गुलनार और उसकी बेटी गुलरू तरक्की करके एक फिल्म कंपनी चला रही है, बैनुल अक्वामी सतह पर वो ऐशो आराम और शोहरत की जिंदगी बसर कर रही हैं और दूसरी तरफ जागीरदार खानदान के जस्टिस रिफाकत हुसैन और उनके बेटे बैरिस्टर शफात हुसैन जवाल की इस हद को पहुंच जाते हैं कि न सिर्फ उनका ताल्लुका जब्त और कोठी फरोख्त हो जाती है, बल्कि उनके खानदान की चश्मो चिराग दिलरुबा बनकर गुलनाज और गुलरुख की फिल्म कंपनी में एक्ट्रेस बन जाती है और उनकी मुंह बोली बेटी भी बन जाती है यही दिलरुबा। इस नॉवलेट के सारे निस्वानी किरदार समाज के अखलाकी इकदार के दबाव में होते हुए भी अपनी किस्मत आप बना लेते हैं। ये औरतें किस्मत का गिला करके चुपचाप रो धोकर बैठ नहीं जाती, जिंदगी गुजारने के लिए जमाने की परवाह नहीं करती और आगे बढ़ती रहती हैं। उनका एक बहुत मशहूर नॉवलेट है अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

这里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं
2: विदुषी।
1: अगर हम खेलों की दुनिया की बात करें तो इस समय फुटबॉल का जादू तो सबके सिर चढ़कर बोल ही रहा है, साथ ही साथ महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का रोमांच भी अपने चरम पर है। भारत की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अगर हम बात करते हैं शूटिंग की तो वर्ल्ड कप वहां पर भी चल रहा है लेकिन जूनियर वर्ग में, और भारत के लिए बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बैडमिंटन की तरफ से भी हमारे पास बहुत अच्छे खेल समाचार हैं, साथ ही साथ प्रो लीग पर भी रिपोर्ट है।
1: जी, तो हमारे पास तमाम खेल खबरें हैं। शुरुआत करते हैं फुटबॉल से।

0: फुटबॉल फीवर इन दिनों दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ कम ख्याति प्राप्त टीमें बड़ी माने जाने वाली टीमों को चौंका रही हैं, तो वहीं युवा खिलाड़ियों की चमक के बीच बड़े नामों का जादू भी चल रहा है। तभी तो कभी मेसी, कभी एम्बाप्पे, तो कभी रोनाल्डो का करिश्मा देखने को मिल रहा है। संभवतः अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड्स की बारिश की और उनकी टीम पुर्तगाल ने आक्रामक खेल दिखाते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के एकतरफा मुकाबले में पुर्तगाल ने 5-0 की जीत के साथ टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की। पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो की सेना पर वापसी का भारी दबाव था, लेकिन 41 साल के करिश्माई कप्तान ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि कई रिकॉर्ड्स के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। रोनाल्डो ने 6वें और 39वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि नूनो मेंडेस ने 17वें और राफा लियाओ ने 87वें मिनट में 1-1 गोल किया। एक गोल पुर्तगाल को तोहफे में मिला जब उज्बेकिस्तान के नेमातोव ने 60वें मिनट में अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचा दिया। इस जीत से पुर्तगाल की टीम अपने ग्रुप में 4 अंक के साथ सबसे ऊपर पहुंच गई है। मैच के 6वें मिनट में जोआसो कैंसिलो के बेहतरीन क्रॉस को रोनाल्डो ने गोल में तब्दील कर टीम का खाता खोला।
1: And we're underway in Houston. This Group K showdown. Portugal all in red. 5 in red in the middle. Ronaldo! The farewell may be approaching, but the legend is not finished yet. The first player ever to score in 6 different World Cups.
0: इस गोल के साथ ही वो 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद 39वें मिनट में रोनाल्डो ने बॉक्स के कोने से एक और शानदार मैदानी गोल दागकर पुर्तगाल की बढ़त को 3-0 कर दिया। यह रोनाल्डो का 10वां वर्ल्ड कप गोल था, जिसके साथ ही वह महान खिलाड़ी यूसेबियो के 9 गोल को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 वर्ष और 138 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ कैमरून के रोजर मिला है, जिन्होंने 1994 में रूस के खिलाफ 42 वर्ष और 39 दिन की उम्र में गोल दागा था। शानदार खेल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। उधर कोलंबिया ने ग्रुप के में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे का रहा। दोनों ने अपने नियंत्रण में गेंद को रखने की कोशिश की और वार पलटवार का दौर चलता रहा। पहले हाफ में तमाम कोशिशों के बाद भी किसी टीम की तरफ से कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन दूसरे हाफ में 76वें मिनट में कोलंबिया के डेलियन मुलोज ने गोल को विरोधी गोल पोस्ट में डालकर अपनी टीम को आगे कर दिया।
2: Munoz, right place, right time, wonderful finish.
0: ये बढ़त अंत तक कायम रही। इस जीत से कोलंबिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर बना हुआ है। के की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोलंबिया 2 मैच में दोनों जीत कर 6 अंक के साथ शीर्ष पर है। पुर्तगाल 1 जीत और 1 ड्रॉ के बाद 4 टीमों में दूसरे स्थान पर है। डीआर कांगो 2

0: में एक ड्रॉ और एक हार के साथ एक अंक लेकर तीसरे और उज्बेकिस्तान दोनों मैच हारकर सबसे नीचे चौथे स्थान पर है। वहीं ग्रुप एल में इंग्लैंड ने घाना के साथ मुकाबले में निराश किया। इंग्लिश टीम से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन मैच का अंतिम विजिल बजने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। बॉस्टन के जिलेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। हम आपको बता दें कि दोनों टीमें अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी थीं। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से मात दी थी। ऐसे में दोनों के पास लगातार दूसरी जीत दर्ज कर समय से पहले राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की करने का मौका था। साल 2018 विश्व कप के बाद से इंग्लैंड की एक पुरानी समस्या लगातार उसका पीछा कर रही है। टीम किसी भी टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच जीतने में सफल नहीं हो सकी है। यह सिलसिला अब थ्री लायंस के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में एंटे बुदिमिर के गोल के दम पर क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया।
1: Here goes Croatia. Whipped across and in. Budimir bounces off the bench. And the Croatian class comes to the fore. After all their work rate from the first half, Panama are undone. And it's the substitute who makes the difference.
0: इस जीत के साथ क्रोएशिया ने नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं, जबकि पनामा टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ग्रुप एल की अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड ग्रुप के दो मैच में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 अंक लेकर टॉप पर है। घाना के भी दो मैचों के बाद इतने ही अंक हैं, लेकिन गोल औसत के आधार पर वह इंग्लैंड से नीचे दूसरे स्थान पर है। क्रोएशिया के दो मैच में एक जीत और एक हार के बाद 3 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है, जबकि पनामा अपने दोनों मैच हारकर सबसे नीचे चौथे स्थान पर है और फीफा विश्व कप 2026 में उसका सफर समाप्त हो गया है।

11 जून से शुरू हुए फीफा विश्व कप के 14वें दिन 6 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड का सामना सह मेजबान कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में एशियाई टीम कतर बोस्निया हर्जेगोविना के सामने होगी। ग्रुप सी में मोरक्को की टक्कर हैती से और स्कॉटलैंड का सामना ब्राजील से होगा। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका की टीम साउथ कोरिया से भिड़ेगी तो चेकिया का सामना मैक्सिको से होगा। ग्रुप ए में मैक्सिको पहले, कोरिया दूसरे स्थान पर है। ग्रुप बी में कनाडा पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। ग्रुप सी में ब्राजील ने पहले नंबर पर जगह बना रखी है और मोरक्को दूसरी पोजीशन पर है।

श्रोताओं, अब लिए चलते हैं आपको क्रिकेट की तरफ। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड के विभिन्न मैदानों में खेला जा रहा है और अब प्रतियोगिता अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल की दौड़ रोमांचक होती जा रही है और हर मुकाबला टीमों की किस्मत तय कर रहा है। आइए जानते हैं 23 जून को खेले गए दो महत्वपूर्ण मुकाबलों का हाल और आगे होने वाले बड़े मैचों का पूर्वावलोकन। इंग्लैंड में ग्रुप दो के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ को और दिलचस्प बना दिया। मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू हुआ। श्रीलंका की कप्तान चम्मारी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। आयरलैंड की टीम महज 3 रन पर 2 विकेट गवा बैठी और जल्द ही उसका स्कोर 19 रन पर 3 विकेट हो गया। श्रीलंका के विकेटकीपर ने एमी हंटर को रन आउट कर और उसके बाद स्टंपिंग कर शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान गेबी ने हालांकि संघर्ष जारी रखा और 50 गेंदों में 59 रन बनाए। उन्होंने लिया पॉल के साथ 66 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी। अंत में एलिस टेकर ने 28 रन की उपयोगी पारी खेलकर आयरलैंड को 20 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका की ओर से मिथाली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 18 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। कप्तान चम्मारी टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलते हुए 61 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए। उनकी पारी में 17 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अथियापथ्यु और इमेश अदुलानी ने पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े और आयरलैंड को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया। उन्होंने चौका लगाकर जीत सुनिश्चित की और श्रीलंका ने 16वें ओवर में 1 विकेट पर 134 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका के 4 अंक हो गए हैं। अब टीम 26 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान

उतरेगी और सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए उसे एक और बड़ी जीत की आवश्यकता होगी। अब बात ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले की, जहां 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन के विशाल अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहली ही गेंद पर बेथ मुनी को आउट कर शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद एलिस पेरी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पेरी ने 48 गेंदों पर 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने जॉर्जिया वॉल के साथ शतकीय साझेदारी की, उन्होंने 39 रन का योगदान दिया। निकोला कैरी और एनाबिल की तेज पारियों के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बनाए। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम दबाव में बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही उसके 3 विकेट गिर गए। मुनीबा अली ने 25 गेंदों पर 32 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। एलिस पेरी ने गेंदबाजी से भी कमाल दिखाते हुए 1 ओवर में 2 विकेट लेकर केवल 9 रन दिए। सोफी और एनाबेल ने बाकी बल्लेबाजों को समेटते हुए पाकिस्तान को मात्र 86 रन पर आउट कर दिया। अब एक नजर डालते हैं आगामी मुकाबलों पर। आज ग्रुप 2 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और सेमीफाइनल की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाना चाहेंगी। आमने सामने के रिकॉर्ड में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज को सिर्फ 10 जीत मिली है। इसके बाद भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी 25 जून को चेस्टर में खेले जाने वाले भारत और बांग्लादेश के मुकाबले पर। ग्रुप ए का यह महत्वपूर्ण मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल की राह मजबूत करने के लिए जीत जरूरी है। हालांकि भारत को एक बड़ा झटका लगा है, ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह अनुभवी स्पिनर राधा यादव को अंतिम एकादश में मौका मिल सकता है। भारत की स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी, जबकि बांग्लादेश की टीम एक बार फिर अपने अनुशासित और संघर्षपूर्ण खेल से चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी। सेमीफाइनल की दौड़ अब बेहद रोमांचक हो चुकी है और आने वाले मुकाबले यह तय करेंगे कि कौन सी टीम अंतिम 4 में अपनी जगह बनाने में सफल रहती है। श्रोताओं, क्रिकेट जगत से आपको दे देते हैं 2 और बड़ी खबरें। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई हाई प्रोफाइल खिलाड़ी अदला बदली पर पूरी हो गई है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ चोटिल ऑलराउंडर नितेश कुमार रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखलाओं से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को भारत टीम में शामिल किया गया है।

0: हॉकी के मैदान पर भारतीय टीम ने कल एक बार फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। लंदन में दोनों टीमों के समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच मैन इन ब्लू ने अपने FIH प्रो लीग 2025-26 के लंदन लीग की शुरुआत पाकिस्तान को हरा कर की।
1: And it finishes and it's Indian cheers despite the late Pakistan third goal. A 7-goal thriller in the hot heat of London. And as Pakistan and India reacquaint themselves on the international stage, this decade run of Indian dominance continues.
0: Lee Valley Hockey and Tennis Center में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने 4-3 की नजदीकी जीत हासिल की। मैच की शुरुआत दोनों टीमों ने संभल कर की और शुरुआती मिनटों में एक दूसरे के सर्कल में लगातार प्रवेश किया। विश्व की 12वीं रैंकिंग वाली टीम पाकिस्तान को 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब अहमद नदीम ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को भुनाते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम लगातार वापसी का प्रयास करती रही। यह अलग बात है कि सभी कोशिश नाकाम रही। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत ने लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन सब बेकार गया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने खेल की रफ्तार और बढ़ाई और 22वें मिनट में स्कोर बराबर कर दिया। दिलप्रीत सिंह के दमदार शॉट को गोलकीपर मुनीबुर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे, ये किस्सा था रामायण से, और कलाकार थे योगेश कुमार और उनके साथी।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, और अब हम बात करेंगे उस योजना के बारे में जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि अटल पेंशन योजना है।
0: बिल्कुल,
1: यह योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और आम नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
0: बिल्कुल,
1: ये उन भाई बहनों के लिए है, उन वृद्ध लोगों के लिए है कि जो 60 वर्ष के बाद दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार ने ये योजना चलाई है ताकि उन लोगों को दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े।
0: बिल्कुल, और ये योजना शुरू होती है जब आपकी उम्र 18 साल है और 40 साल के आप या 40 साल के बीच में, 18 साल से 40 साल के बीच में

0: आप इस योजना में भाग ले सकते हैं, अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और जितनी जल्दी आप इसमें योजना में अपना नाम लिखवाते हैं या अपनी पेंशन का खाता खुलवाते हैं, उतना ही आपको फायदा होगा,
1: उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ऐसे क्या होता है, इसकी शुरुआत जो होती है 1,000 से 5,000 रुपए तक के बीच में आपको एक सुनिश्चित पेंशन मिल जाती है। आप जितना लेट करेंगे उतना कम मिलेगी, और जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना ज्यादा आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं,
0: आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं एक और रागनी अपने भाइयों से, भाइयों को ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज में।

0: तो श्रोता सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज़ में ये रागनी। और श्रोताओं, जैसे कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरों को खुशी मिले और किसी को ऐसा खुशी मिले जो उसके लिए जिंदगी भर के लिए अच्छा हो, तो इसमें बात करेंगे हम रक्तदान महादान की। रक्तदान ऐसा दान है जिससे आप दान करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, प्रसव होते हैं, गंभीर बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, ऐसे मरीजों को समय समय पर खून की जरूरत होती है। तो आप अपनी इच्छा से अगर रक्तदान करते हैं तो ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल। और एक बार में किया हुआ रक्तदान शीतल बहन तीन अलग अलग लोगों की जान बचा सकता है। जैसे कि प्लाज्मा बन जाता है उसका, प्लेट्स और लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि तीन तरह से उस खून को यूज कर सकते हैं और तीन लोगों की जान बचा सकते हैं।
0: लेकिन लोगों को क्या लगता है, कई बार लोग इसलिए रक्तदान नहीं करते कि अगर हमने रक्तदान कर दिया या हमने अपना खून दे दिया तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी।
1: लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। एक हमेशा स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से लेके 65 साल की उम्र तक अपना रक्तदान कर सकता है। और जो रक्त आपने दान किया है वो कुछ ही घंटों में आपके शरीर में दोबारा
1: बनना शुरू हो जाता है। और ऐसे में हृदय रोग का जो रोग होते हैं उसका भी खतरा कम रहता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
0: राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए कुछ ही पलों में सुने हिंदी में समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर

0: पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: तो श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हैं हम आपका कार्यक्रम लेके कृषि जगत
1: जी। और देखिए कृषि जगत में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी बातचीत करेंगे और अपने भाइयों से भी बातचीत करवाएंगे कृषि समाचार के माध्यम से जो संध्या गुप्ता लेकर आई हैं और उनका मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम कृषि समाचार दर्शन संध्या गुप्ता से सुनवाते हैं जो उन्होंने किसान भाइयों से कुछ बातें करी हैं, तो वो सुनते हैं।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 20 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल की हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा करे हैं।
3: मैं संजय शर्मा, पुस्तैनी किसान, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से। मेरे यहाँ सब्जियों की खेती होती है। दिनांक 20 जून 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई, जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और सहायता के रूप में ही कहूंगा कि ऐसे टाइम पे जब बुआई का टाइम आता है, खाद बीज उर्वरक की जरूरत होती है, उस टाइम पे ये किस्त आती है तो बहुत काम आती है। इसमें महिला किसान भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उनको भी लाभ मिला है और ये विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी पहलों में से एक बन गई है, जो डायरेक्ट किसान के खाते में, सरकार का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है। और मैं अगर किसान उसकी बात करूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जिनका हम लाभ ले रहे हैं। हम वेजिटेबल्स की खेती, सब्जियों की खेती करते हैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जो भी योजनाएं होती है उनका मैक्सिमम लाभ हमको मिलता है। कभी कभी तो ये प्रोग्राम चल रहा होता है और एकदम से जो पता नहीं चलता और मैसेज आ जाता है, कभी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से एक दो दिन लग जाता है, बाकी वैसे उसी टाइम पे आ जाते हैं, उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रधानमंत्री जी सीधा किसानों से संवाद करते हैं, सामने भी और वर्चुअल माध्यम से भी, मतलब बड़ा आनंद आता है। जो उनका वितरण करने का तरीका है वो भी अपने आप में सराहनीय है। सबको जानकारी दी जाती है उसके लाभों के बारे में, सब चीज के बारे में, और वो बहुत आनंद आता है। किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि मुझे तो इसका प्रोग्राम जो होता है वो उत्सव हो गया और सहायता है ही है। ये किसानों के लिए सहायता भी है, उत्सव भी है, सम्मान भी है और प्रोत्साहन भी है। अब तो सब ये इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आती है तो उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका डायरेक्ट संवाद करा के डायरेक्ट उनसे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट की जाती। शुरू में आती थी, अब इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है पीएम किसान सम्मान निधि, किसान का जो सम्मान सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे देश के किसानों को एक साथ जोड़ करके उनके खातों में सम्मान निधि के रूप में किस्त देना अपना आप सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्व में इस तरह की पहल को हमने कभी सुना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है, जो किसानों से वो सीधा संवाद करते हैं, सीधा जुड़ते हैं और एफपीओ भी वो बना रहे हैं, किसान सम्मान निधि होगी, उन्होंने एफपीओ बनवाए किसानों के, बहुत सारी चीजें जो हम, मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर लूँ तो सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और ऐसी बात नहीं है, जो डिपार्टमेंट भी है वो भी सर किसानों को खूब जानकारी दे रहे हैं और किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
4: नमस्कार, मैं यशपाल सिंह राठौर, ग्राम कंदा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का एक किसान हूँ। 40-50 साल से खेती कर रहे हैं, उस बचपन से ही कर रहे हैं समझो। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है अलीराजपुर जिला, तो ये मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये खेती बरसात की करते हैं। आम का बगीचा भी मैंने लगाया है पश्चिम बंगाल से, जो 20 जून को डाला है हमारे किसानों के लिए। तो ये तो हम तो बिल्कुल ताक में रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब हमें ऐसी सहायता दे, और अभी तो ये बरसात का मौसम है, तो ऐसे में अगर हमारे को ऐसी सहायता मिल जाए तो इतना मैं खुश हूँ। ये इलाका जो अलीराजपुर है बिल्कुल आदिवासी इलाका, गरीब जैसा है, तो यहाँ पे अगर 2000 की सहायता मिल गई तो किसान तो इतने खुश है कि पूछो मत, उनको खाद बीज का सहायता मिल जाती है। जी, ये 23वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने हमारे को आई है, बहुत ईजी काम है। जिसका भी किसान में के उसमें नाम है तो हमारे वहाँ पटवारी और मोदी जी ने इतना अच्छा सहयोग किया था कि किसानों को दौड़ना ही नहीं पड़े। पटवारी साहब खुद आए थे, सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और ऑनलाइन ले लिया उनने, खाता नंबर और सब। पटवारी साहब ये ग्राम पंचायत में आए थे सब अधिकारी, और उन लोगों ने सब डॉक्यूमेंट्स लेके और चालू हो गई हमारी, बहुत अच्छे से चालू है अभी पंचायत। दूसरी जगह को पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ तो पंचायत में खुद अधिकारी, बैंक का अधिकारी आया थे, पटवारी साहब आए थे, ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच सब बैठे थे और हर की ड्यूटी लगाई थी। हर किसान को आधार कार्ड है, बैंक का खाता नहीं तो उसका जीरो से खाता भी खुला उन लोगों ने, और बहुत अच्छे से आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, हमको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा और आज हमसे चालू होगी जी। ये 24 फरवरी 2019 से जो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लागू की है उससे पूरे साल भर में आती है, तो ये तो बहुत अच्छी योजना है और हमारे को तो खूब लाभ होता है। 10 रुपए भी किसी को देना नहीं, 2000 रुपए है तो डायरेक्ट पूरे दो, मतलब 10 पैसे भी किसी के पास नहीं जाएंगे, पूरे 2000 रुपए हमारे पास ही आएंगे। और इसमें हमारे वहां तो महिलाओं का भी, गरीब महिला है आदिवासी, और ये उनका भी किसानों में नाम है, किसान के साथ नाम रहता है, तो वो उनके उस खाते में भी पैसे आ रहे हैं 2000 रुपए। तो महिला तो इतना ज्यादा खुश है कि मोदी जी का नाम लेके बहुत ही उनको तारीफ कर रहे हैं। और मतलब ये समझो कि अगर किसी के पास कुछ नहीं और 2000 की सहायता मिल जाती है तो बहुत बड़ी राहत हो जाती है। ये मतलब कि मक्का का बीज लेना है, छोटी छोटी बात, 100-200 रुपए भी किसानों के पास नहीं रहते हैं, तो हम लोग जब मार्केट में जाना है तो वो लेके अगर मिल जाएंगे तो अभी बरसात की बिल्कुल तैयारी है, खाद लेना, बीज लेना, तो छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए अभी चालू हो रहे हैं स्कूल में, तो सिर्फ देना कितने उनको 50 रुपए 100 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ आदिवासी बेल्ट है तो किसी के पास इतने भी पैसे नहीं मिलते। इतने में अगर ये 2000 की राशि मिल गई तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर किसी के पास हम लेंगे बीज और उधार में लेंगे क्या, या फिर व्यापारी से लेंगे, तो जब पकेगा तो डबल देना पड़ता, लेकिन वो तो अब रहेगा ही नहीं, हम बिल्कुल नगद लेके आएंगे, मार्केट में जाएंगे, पैसा देंगे और नगद में लाएंगे, तो बहुत अच्छा है, अच्छी खुशी की बात है। किसानों की आय में तो अच्छा है, जैसे हमारे वहाँ पे ये जो पकता है तो सरकार उसको खरीदती भी है, जैसे गेहूं है, और बोनस मिलता है हमको जो मार्केट में बिकता है उससे 2 पैसे ज्यादा में बिकता है हर चीज, तो बहुत अच्छा है। सब भी अपने बच्चों को, सबको पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं और आने वाला टाइम भविष्य और अच्छा रहेगा। हम शाम को मेरे मोबाइल में तो उनने 20 तारीख को कल डाला है, लेकिन हमारे मैसेज मोबाइल में आज आया मैसेज, और हम साथ में कम से कम 3-4 साथ में मित्र थे, तो वो बोले मेरे मेरे मैसेज आ गया, हम कल से देखते रहते हैं वो मैसेज में क्या, थोड़ा सा 1-2 कलाक ऐसा लेट हो सकता आगे पीछे, तो फिर मैंने बोला कि देखो मेरे आगे 2000, तो फिर थोड़ी देर बाद एक मेरा मित्र बोले कि मेरे भी आगे यार, तो वो फिर तीसरा बोलता है थोड़ी मेरे भी आ गया मैसेज, तो एक खुशी की एक लहर अलग ही रहती है। इसके लिए हम तो सोचते हैं कि ऐसे मोदी जी हमारे लिए खूब किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हमें तो मतलब आपसे अभी क्या बताएं, अगर आप रूबरू देखो तो हमारी आंखों में आंसू है खुशी के, ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमने पहला देखा जो गरीबों को, हमारे किसानों जैसे को याद करते हैं, जो गरीबों का किसानों का हितेशी हो, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम तो मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि की जो राशि मोदी जी ने जो की है उसके लिए मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना दिल से धन्यवाद कि गरीब जो है वो तो आपको इतनी दुआ दे रहे हैं कि हम तो भगवान ही मानते हैं हमारे लिए।
5: जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित व्यास है, तहसील गैरतगंज के ग्राम हिनौतिया खालसा में मेरी जमीन है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीएसबी के आई है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके द्वारा जो आर्थिक रूप से ये मदद की जा रही है बहुत लाभकारी मदद है। ये साल के अंतराल में जो भी हमें राशि व्यय होती है उसका हम कहीं ना कहीं बहुमूल्य उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी इस समय बोनी से संबंधित कृषि में कई लाभकारी कार्य किए जाते हैं, पैसे की आवश्यकता होती है, और इस समय पे जो राशि आई है इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये राशि कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छे आयाम के लिए उपयोग हो रही है। इस समय पे अभी पैसा व्यय करने के बाद में जो छोटे किसान के पास नहीं बचता उस समय ये पैसा आया है, इसके लिए तो आभार ही व्यक्त कर सकते हैं उनका। ये सब YouTube पे प्रसारण देख रहे थे तब बहुत अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री जी का कि ये गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक छोटे छोटे किसान है उनके लिए ये मदद कर रहे हैं, बाकी अभी तक किसानों के हित के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके लिए ये बहुत सुंदर और अच्छा निर्णय लेके उन्होंने जो एक प्रावधान प्रारंभ किया है इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे क्षेत्र के किसान भी बहुत प्रसन्नतापूर्वक बात करते हैं, जब अच्छा भी लगता है जब हम उन लोगों के बीच बैठकर इन तरीके की चर्चा निकलती है। किसान अभी उन्नत खेती करते करते तो हम आ रहे हैं, लेकिन जैविक खेती और इनके प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रोत्साहन देते हैं इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और उनको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे सोयाबीन का बीज अभी इस समय बहुत महंगा चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं जो किसान की क्षमता नहीं थी लेने की, लेकिन ये धनराशि आ गई है तो मक्का का, धान का और सोयाबीन का बीज लेने में जो असमर्थ थे तो इस जगह पे आकर यदि ये पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं जाके अपन अपनी बुआई

0: की तरफ से उनकी जैसा जो विजन ने दे दिया हमें वो देना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं 30 से 40% उगता था। आज हम अपनी मन से पसंद करके जो बीज लेते हैं हाइब्रिड का या किसी भी तरीके का, तो वो उन्नत बीज उत्पादन में हमारी क्षमता बढ़ा रहा है, तो उससे हमारी पैदावार बढ़ रही है, इससे आर्थिक स्थिति दूसरी ओर से भी सुधर रही है, पैदावार अच्छी हो रही है, तो साथ साथ हमारे क्षेत्र के निवासियों को भी इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये कम राशि में अच्छी गेहूं चावल मक्का धान सब हमें अर्थ रूप से यहीं प्राप्त हो रहे हैं कि डायरेक्ट किसान के खाते में डीबीडी के माध्यम से आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर और सराहनीय निर्णय है, क्योंकि इसमें बीज का आर्थिक हस्तांतरण होना या किसी को लेना देना ये सब बातें खत्म हो गई। प्रचार प्रसार पहले से चल रहा था, तो हम उत्साहित थे कि राशि आएगी। धन्यवाद।
1: मैं दीन नारायण सिंह ग्राम दुगना जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। 20 जून 2026 को किसान सम्मान निधि हम किसानों को मिला है। किसान सम्मान निधि के समय किस्त देख मिला, बहुत प्रसन्नित हुआ। इससे इस समय अब धान की बुआई की तैयारी चल रही है, इसे किसानों को हम लोगों का खाद का बीज का खेत को समृद्ध करने में आसानी होता है, जिससे हम लोग खाद का प्रयोग कर लेते हैं, पैसे का तेल का भी यूज हो जाता है, इससे किसानों को सहूलियत मिलती रहती है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से किसानों मिलते हैं, तुरंत एक दूसरे लोग बात करते हैं, लोग हमारे खाते में आ गया, हमारे खाते में किसान समझ आ गया, जो अपने किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोग करना शुरू कर देते हैं। 2 महीना बाद हो जाता है तो हम लोग प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं, जो है ना तारीख को किसान सम्मान निधि हम लोग मिलेगी, जो डेट जारी हो जाता है तो हम लोग उसी दिन का इंतजार करते हैं, किसी खाते में पैसा आया किसी खाते नहीं हो आया तो क्यों नहीं आया, वो किसान उदास रहता है जब तक खाते में पैसे नहीं आते हैं, जब पैसे आ जाते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है। जिसका केवाईसी नहीं होता उनका रुक जाता है, जिनका केवाईसी अपडेट किसान किए रहते हैं उनका समय से मिलता रहता है, वो अपने किसी भी हम जाकर संपर्क करते हैं तो वहाँ सुधार हो जाता है, फिर पुनः आना शुरू हो जाता है। एक बोरा तो हम लोग डाई तो यूरिया ले लेंगे, 1500 में डाई मिल जाएगी, वो यूरिया मिल जाएगी, से हमारा ये कम से कम एक आधार तो हो जाता है, एक एकड़ खेत के लिए हो जाता है हमारा, चाहे जुताई दे सकते हैं, चाहे तेल के दे सकते हैं, चाहे बुआई के लिए बीज ला सकते हैं, ये चीज का पूर्ति हो जाती है एक एकड़ के लिए हमारे। छोटे भी किसान सीमांत भी सबको खुशी मिलती है पैसे मिल करके, सुधार तो आ ही रहा है धीरे धीरे, किसान हमारे जागृत हो रहे हैं, सरकार के प्रति नए नए नवाचार के प्रति नई नई कृषि की विधियों के प्रति अपनी जागृति दिखा रहे हैं, और किसान आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जो भी कृषि है चाहे सिंचाई हुआ सब पर सरकार दे रही है अनुदान, जो किसान जागृत है अपना आवेदन कर रहे हैं वो लाभ दे रहे हैं, और हमेशा टीवी पर अखबार पर हमेशा न्यूज में पेपर में आता रहता है किसानों को अनुदान के लिए, किसानों को सुविधाएं के लिए सरकार सब कुछ दे रही है, बोरिंग दे रही है, इंजन दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है, प्रधानमंत्री जी बोले थे कि किसानों को आय दूना करने के लिए, जैसे पैसा मिल रहा है तो और जब तक तो किसान नवाचार नहीं करेगा नई विधि नहीं अपनाएगा तब तक किसान का आय दूना नहीं हो सकती, किसान को भी आगे आना पड़ेगा आगे करना पड़ेगा, और देश का विकास खेत खाद्यान्नों तो धंधो से होकर गुजरता है, जब तक देश का विकास है किसानों से होकर निकलता है, तब किसान जब आगे बढ़ेगा देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि जो हमारे किसानों को मिल रहा है इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, से हमारी सरकार किसानों को हमेशा ऐसा सुविधाएं मिलती रहे, आर्थिक सहयोग और यांत्रिक सहयोग जो भी कृषि की सुविधाएं है मिलती रहे, इसलिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
2: नाम सुदीप चौरसिया ग्राम कड़ैया का एक प्रगतिशील कृषक हूँ। 20 जून को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हमारे खाते में सीधा राशि का हस्तांतरण किया गया है, और इससे हमें बहुत प्रसन्नता है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, और इससे हम जो है अपने कई कार्य काम कर सकते हैं। जैविक खेती की जिस तरफ वो ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद उर्वरकों का जिस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं और उत्पादन वृद्धि में जिस प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से खेतों में कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो है सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में हस्तांतरित हो रही है, और इससे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रतीक्षा तो कर रहे थे और यहाँ पर बढ़िया माहौल है और लोग इससे काफी प्रसन्न हुए हैं, इससे छोटे किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है, और जो सम्मान निधि से जो भी उनको रुपया मिलता है पैसा मिलता है उससे वो अपने कृषि में नए नए उपकरण वगैरह या किसी प्रकार से हकाई जुताई में इसका वहन करके और इससे फायदा ले रहे हैं, और अपना जो भी कृषि से जो भी आय हो रही है उससे इसमें बचत हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त तो उद्यानिकी में कई सारी योजनाएं हैं, कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे कि किसानों को बराबर इनसे लाभ ले सकते हैं।

0: और हम भी इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार काफी सारी योजनाएं चला रही है, इसी तरीके से और नई नई योजनाएं चला करके किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। भारत सरकार किसानों के लिए एक नए नए आयाम विकसित कर रही है और काफी अग्रणी विकास कर रही है। 20 जून को जो हमारे खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जो डली हुई है, उसके लिए हम भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे संध्या गुप्ता के साथ कुछ किसान भाइयों की बातचीत। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कल 23वीं किस्त हमारे किसान भाइयों के खाते में डाली थी और इसी वजह से हमारे किसान भाई बहुत खुश थे कि वो बीज ले सकते हैं, अपनी अपनी फसल के लिए कुछ और कर सकते हैं, या उनके हाथ में पैसा आ गया है तो वो अपनी फसल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जब उन्होंने 23 जून पे सीधी किस्त उनके खातों में डाली और उन्होंने मैसेज देखा तो उनके चेहरों पर अलग ही खुशी
3: रौनक थी।
2: बिल्कुल।
3: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं दिनेश गिरी की आवाज में एक उपदेश।
2: जी,
4: जिस घर

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे दिनेश गिरी की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम गीत और गजल, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल। कलाकार हैं जगजीत सिंह और साथ में चित्रा।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह स्टेशन चरण 5A के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम मार्ग का विस्तार है। 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
2: यह परियोजना राजधानी दिल्ली के मुख्य हिस्से से आवागमन को सुदृढ़ करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के पूर्वी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 58 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147 करोड़ रुपए, उत्तरी रखरखाव क्षेत्र में 104 किलोमीटर लंबी सड़क पर 247 करोड़ रुपए और दक्षिणी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 107 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय की जाएगी। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
1: बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लगभग 1668 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये कैंपस राजधानी में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कैंपस विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने आज नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
5: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, सर्वोत्तम पुलिस पद्धतियों को अपनाने और AI तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से सामुदायिक पुलिसिंग और खुफिया जानकारी जुटाने में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का भी आग्रह किया। संधु ने मानवीय, दृश्यमान और सक्रिय नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत हो। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके यातायात चुनौतियों का समाधान करने का भी निर्देश दिया और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री संधु ने कर्मियों के कल्याण, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस आवासीय परिसरों को अवशिष्ट मुक्त कॉलोनियों में बदलने के महत्व पर भी चर्चा की। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक में सरकार और आम नागरिकों के बीच दूरी पर विचार किया गया है। इसमें जन केंद्रित शासन के माध्यम से यह दूरी कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तक दुनिया के

0: सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि दिल्ली के किसानों की वैकल्पिक आवासीय प्लाटों के आवंटन की मांग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। श्री बिधूड़ी ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी तथा जिनके वैकल्पिक आवासीय भूखंडों के आवेदन भूमि और भवन विभाग की सिफारिश के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर वैकल्पिक आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री सूद ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना के विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की। श्री सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में जनहित और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र की प्रगति और जनकल्याण को नई गति देने का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना और विकास को नई दिशा देना ही दिल्ली सरकार का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज लाजपत नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाही ने रोगियों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, डे केयर, फिजियोथेरेपी, एक्सरे कक्ष और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। श्री वाही ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने असमर्थ रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नई दिल्ली में रफी मार्ग पर उद्योग भवन के पास झुग्गी में आज तड़के आग लग गई। दमकल विभाग को सवेरे 3 बजे सूचना मिली और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए राजधानी में तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कीर्ति नगर और मोती नगर में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राजधानी में नालों की डी सॉल्टिंग का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वर्ष डी सॉल्टिंग अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का कार्य पूरा किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता और फील्ड टीमें मानसून से पहले सड़कों और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
3: 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम देख लें कि सारे काम हो रहे नहीं हो रहे। जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रेक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं। जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दिल्ली की जनता को इस बारिश में कोई जल भराव ना दिखाई दे इसके लिए हमारा प्रयास।
2: श्री सिंह ने कहा कि रखरखाव अनुबंध होने के बावजूद कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
4: बैठक में अधिकारियों ने राजधानी में इन बीमारियों की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों, मच्छर नियंत्रण गतिविधियों तथा जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की कि घरों और आसपास कहीं भी मच्छरों के पनपने की स्थिति न बनने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तथा त्वरित प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था को विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल सक्रिय रूप से इन मामलों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं अमित कुमार त्यागी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन एआईआर

0: www.govindia.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। इसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पत्र मांग और आपूर्ति में कमी तथा पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालतें शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यातायात पुलिस ने बताया कि ये न्यायालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माह के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के समझौता योग्य यातायात नोटिस या चालान शामिल किए जाएंगे, जिसमें चालान या नोटिस की सीमा प्रति वाहन अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। ये सुविधा दिल्ली के पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी और द्वारका न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात पुलिस ने कहा कि चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कल से लाइव की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम में वर्षा से दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुडो की घड़ी वक्त बता रही है 8:00। ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए चंद बहुत ही खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने

0: के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित

0: कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है।

0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुमार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपन्यार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक 4 अफराद लापता है। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नेपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपत में पूर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमाया तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायत पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया, जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इख्तदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नेज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबोहवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात के मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थीं। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिंजम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक हजारवां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगीमेल बंदरगाह पर MSC लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिंजम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने के लिए CID की एक टीम रिम्स पहुंची। CID की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। यह तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज नाअहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, निज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रियर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सम्मान दिया है। ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। आप सोचो, वो निर्णय नहीं लिया होता, वो बीज ही नहीं बोया होता, तो क्या आज वो बीज वटवृक्ष बन पाता? मैं हमेशा कहता हूं, जो बीज बोया गया, जो नींव रखी गई, वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया, बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है। तो हमारे लिए तो जी देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का सम्मान है, मैं ऐसा ही मानता हूँ।
1: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable recipients is Dr. V. Kamakoti, an eminent computer scientist and academician. He is currently serving as the director of Indian Institute of Technology, Madras. Through his contributions to indigenous computing technologies, digital innovation and education, Dr. Kamakoti has played a significant role in strengthening India's technological capabilities. His work reflects the growing importance of scientific innovation in achieving the vision of an Atmanirbhar Bharat. This is what he said in an exclusive interview to Akashvani.
2: My academic journey started. I joined a school called Vidya Bharati, a very cool school. I was very much deeply into cricket. Then I took violin. Then I started learning violin. And that journey continued for 18 years. After that, plus one and plus two, I joined another school, PS Senior Secondary School. That was a turning point. A in education is very, very important to me. See, any technology that we see, there's a good and bad. And it's very important to take all the good and eliminate all the bad. And this elimination of the bad comes from two good habits, good type of people who develop those systems, and then regulations. So three things play an important role. Today we have at least three, four companies who are working based on Shakti, and that is extremely important today. We need semiconductor companies here, not just design companies, but system companies which can make the entire system. So we have developed, if you say a mobile phone, right, there's some person who make the application processor. There's somebody who licenses the processor to them. So there's a company which licenses the processor and somebody makes a chip out of it. So we have companies which make the core and license it.
1: Among this year's inspiring Padma awardees is Budh Thai, a grassroots social worker from Maharashtra whose life has been dedicated to the welfare of tribal communities. For decades, Budh Thai has worked tirelessly to improve the lives of women and children in remote tribal regions. Through her efforts in education, healthcare awareness, nutrition and community empowerment, she has helped bring positive change to some of the most underdeserved sections of society. Let's listen to what she said, speaking exclusively to Akashvani News.
3: गांव हिरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घूमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: The Padma Awards have long celebrated the extraordinary achievements of individuals across generations. This year's list includes accomplished personalities from fields as diverse as music, cinema, sports, public affairs, medicine, social work, and entrepreneurship. Several

فأتت به قومها

0: contemporary India. The first civil investiture ceremony for the Padma Awards 2026 was held at Rashtrapati Bhavan on the 25th of May, where President Draupadi Murmu conferred awards upon 66 distinguished personalities in the presence of Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and other union ministers. Today marks the second phase of the investiture ceremony, continuing the tradition of honouring excellence across the nation. At the heart of the Padma Awards lies a unique philosophy. Over the years, the government has increasingly focused on identifying grassroots achievers whose work has created a lasting impact at the local level. The result is a People's Padma, honours that celebrate service, dedication and perseverance, regardless of fame or recognition. Citizens across the country now actively nominate deserving individuals through an open nomination process. This democratization has helped bring national attention to grassroots innovators, tribal artists, environmental champions, educators, healthcare workers, and social reformers who may otherwise have remained unknown outside their communities. Among the recipients this year is Professor Shafi Shauk from Jammu and Kashmir, who has been awarded the Padma Shri for his outstanding contribution to literature and education. A distinguished scholar, linguist, poet and author, Professor Shauk has dedicated decades to preserving and promoting the Kashmiri language. Through his academic work, writings and literary contributions, he has helped strengthen the cultural and linguistic heritage of Kashmir. His recognition reflects the importance of preserving India's rich diversity of languages and traditions. Speaking exclusively to Akashwani, this is what he said.
1: Kashmiri zaban ka pehla grammar likha jab main college mein tha. College mein hi maine pehli baar ek journal bhi start kiya. Khud hi apne haath se kalam se likhta tha. Uska naam tha Ash. और फिर लाल चौक में आकर शुपियान से अननाक अननाक से लाल चौक में वो बेचता मैं तो उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए तो उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में से मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर हालांकि कश्मीरी में मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन मेरी किताबें थीं
0: Another inspiring recipient is Nilesh Manlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Manlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in facilitating thousands of organ donations and helping patients receive a second chance at life. His work stands as a powerful example of how one individual's commitment can transform an entire social movement. Let's listen to what he said, speaking exclusively to Akashwani News.
2: ये सबसे बड़ा अवार्ड था आज भी मैं यही कहता हूँ आज पद्मश्री आने के बाद में भी मैंने यही कहा कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है इन सभी का सम्मान है आप सोचो वो निर्णय नहीं लिया होता वो बीज ही नहीं बोया होता तो क्या आज वो बीज वटवृक्ष बन पाता मैं हमेशा कहता हूँ जो बीज बोया गया जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है तो हमारे लिए तो जे देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं ये सभी का सम्मान है मैं ऐसा ही मानता हूँ
0: The Padma Awards 2026 also honor excellence in science, technology and innovation. One of the notable

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हो गया है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म तानसेन से ये गीत KL सहगल साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्हें दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish.

न्यूज 24/7 समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी

0: कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल कोई फरियाद।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, और लीजिए अब पेश है शमोना राय विश्वास की आवाज़ में ये गज़ल इशरते।

0: और साथियों लीजिए आप सुनिए छाया गांगुली की आवाज में गजल नाज था खुद पर।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है, कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गांगुली।

0: दिनेश प्रभाकर की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही आज की गजलों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वलन वादन। कलाकार हैं TK जयराम अय्यर, संगीतकार हैं त्यागराजा। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है रामानंद ऐश्वरन ने और आपने प्रस्तुत किया है राग श्री रंजनी जो आदि ताल में निबद्ध है। तो लीजिए प्रस्तुत है TK जयराम अय्यर का वलन पर राग श्री रंजनी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे टी के जयराम अय्यर। आपने प्रस्तुत किया राग श्री रंजनी जो आदिताल में निबद्ध था। संगीत दिया था त्यागराजा ने। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया था रामानंद ऐश्वरन ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी।

0: अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा का। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:30। इसके अंतर्गत आज प्रसारित किया जाएगा उस्ताद अहमद रजा का बजाया विचित्र वीणा वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग अहिरी तोड़ी। सुबह 6:10 पर सुनिएगा वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनिएगा। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 97। संस्कृत में समाचार का समय रहेगा 6:55 पर और फिर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। साथ 10 मिनट पर सुनेंगे संगीत का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संचिता रॉय की गायेगी। साढ़े 7 सुनिएगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे 8:45 पर। आज आप सुनेंगे रित्विल सान्याल का गाया राग जौनपुरी। 9:15 पर सुनिएगा उद्योग पत्रिका। आज का विषय रहेगा फार्मेसी प्रबंधन शिक्षा प्रशिक्षण और अवसर। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। प्रस्तुत करेंगी बलविंदर कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। स्वरांजलि का समय रहेगा 11:10। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल

0: खेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टिपत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The projects aimed at boosting economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination and speedy resolution of pending issues. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the representatives of various political parties, including BJP, Aam Aadmi Party and Indian National Congress, attended the meeting. It added that the CEO informed them about the main objective of the SIR. No eligible citizen is left out, while no ineligible person is included in the electoral roll. Political parties were briefed also about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due who suffered due to the excess.

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें।

और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।